दिखते पार तले कवन जोर एनी बड़ी एनी गिनती विच धरती उनके थले केड़ा जोर है केड़ी शक्ति है जेड़ी नु अटल बिन थम्मा गगन रहाया भी कीती बैठी है ते धरती नु भी अडोल खड़ा कीती बैठी है। मैं कल कीती सी पानी दी सतह ते पानी दे तालाब विच कच्ची मिट्टी दी एक गली छुट के देखो तार नहीं सकता डुब जाएगी कुछ मिनट बाद गल जाएगी अपनी होंद नहीं कहने लग सकती कच्ची मिट्टी की धरती सारी पानी की सतह से खलोती।

भाई कोई वेखो योजा लेखा कोई करके विखावे भला लिखन वाला तो कित रह गया उन्हें जीवन का लेखा ही कंप्लीट कर दियो किन्ने आए ने उन्होंने लेखा हो देना तो कित रह गई उन्होंने लेख पढ़ने का कित रह गई कहने लगे उन्हें जेड़े लिखा के आए ने उन्हें गिनती करनी औखी कौन है कोई उन्होंने वर्गा उस अकाल पुरख वर्गा

एक आवाज तुम इन बड़ा पसारा बन गया। उन्हें बनाने लगे बहुत ही देर नहीं लगाए। अजकल भी साइंसदानों की नवी टेक्निक असी कहने बड़ा अगह बदू एडवांस संसार कहने आटोमैटिक मशीनों ने बहुत तेजी प्रोडक्शन शुरू कर दी हुई है, पर इनी तेज प्रोडक्शन कि एक आवाज दे इना ब्रह्मांड खड़ा हो जाए। है किसी साइंसदान की बनाई हुई ऐसी तकनीक मेरे रब के मुकाबले?

बस आ मेरा विश्वास कि जो तेन चंगा लगे है वो बहुत चंगा बने क्योंकि उनका करता तू है। इसलिए मैं संसार नू माड़ा नहीं आता, दुनिया तो नफरत नहीं करता, क्योंकि मैं समझना कि मेरा तुहाडा संसार दे किसी मनुख का बनाया होया नहीं, जेड़ा प्रभु मैनू बहुत प्यारा ना उनके प्यारे का बनाया होया कुछ मैं। इसलिए मैनू यह भी चंगा लगता है, जो तेनू चंगी लगी है चीज मैं उसके नाल प्यार कर रहा, आकेशा नाल प्यार भी इतों ही जन्म लेता है। हर मनुख यह समझ ले कि हे मेरे मालिक जो तू बनाया बहुत चंगा बनाया, जो तुद भावे साई भलीकार, कि तेनू मनुख केसा ते दारे वाला चंगा लग्या तू बना दिता, मैनू किवें माड़ा लग सकता।

0: उच्चारण से रक्षा करता है। त्रय काल अबाद रूप है। गुरमुखो जी अभी वक् वक् प्रार्थना ग्रंथों पढ़ते हैं ना तो उन्होंने साडे वडेरिया महापुरुषों ने इनू ओंकार वक् वक् रूपों में कहने का यतन किया है। मेरे पढ़ने के मुताबिक दुनिया के सत मत ने केवल से केवल ओंकार बारे और उन्होंने सत मतों के नौ नौ भेद ने ओंकार की व्याख्या के कहण घुमरा दे भी त्रेह टीमां बन गई ने जिन्हां ने ओंकार की व्याख्या तो की पर मुकम्मल नहीं कर सके। त्रेह टीमां ने त्रेह टीमां जिन्हां ने आपो अपने अनुभव के मुताबिक ओंकार बारे कहा जरूर लेकिन उस गल नूं फाइनल नहीं कर सके। इत्थे गल मुक गई है। हां इन्ना जरूर है कि गुरमुखा जे तू एक ओंकार नूं बोले तेरी रख्या लाजमी करेगा। जे कि भाई मरदाना कौडे रख के काबू आ जाए ना तो तबदा कड़ा वेख के आके बाबा मैं तेरी हजूरी विच कीता कीर्तन तू लोग से परलोक का रख है तो मैनू जबलपुर के जंगल चो बगटाएगा ना। मेरे पास हस के कहते मरदानिया निगाह मार तू बुला तो सही मैं तेरे कोल ही हाँ। जिहड़ा ओ अहंकार गुरमुख है तो साडे अंग संग है तो साडी रख्या करन वाला पर आप इन्ने आकड़ बाज हाँ भी कदे ओंकार नूं चेते कीता ही नहीं। जिन्हां ने चेते कर लिया उन्हां दी रख्या करदा भावें वक् वक् रूपां विच किया जरूर लेकिन है वो एक पूरी समझ किवें पवेगी। सतगुर प्रसाद जिन्ना चिर गुरमुखा सच्चा गुरु तेरे ते तरसना ना करे मैनू नहीं पता भी विद्वानों ने की अर्थ किए ने क्योंकि विद्वान ने गुरमुख जन उन्होंने अपनी डूंगी टुभी मारनी है ते मेरी टुभी इन्नी लंबी नहीं उन्होंने दम पक्के ने दम पक्के वाला बहुत समा अंदर रह सकता पानी च मैं तो ये देसी चर्च ये समझे ने कोई गुरमुखा तू सच्चे गुरु को जा वो तेरे ते करेगा कृपा ते भावें तेन आंदा जांदा कख नहीं वो सच्चा गुरु अठवां पातशाह तेरे सिर ते हाथ रख के गीता दे अर्थ करा देगा। सच्चा गुरु जो आया भावें तू गीता पढ़ी नहीं भावें तेनू गीता का ज्ञान नहीं भावें तू लोगों के घर केवल से केवल पानी धोया है पर जे सच्चा गुरु अठवें पातशाह मेरा बालक तेरे ते कर दे कृपा लाल चंद पंडित दे श्लोक पढ़न तो पहला गुरमुखा तू अर्थ कर लेगा। अजे लाल चंद पंडित ने श्लोक नहीं पूरा किया ये छजू झोर कहता कि गुरमुखा ये अर्थ ने ते अगे चल ये सच्चे गुरु की समर्था है ये सच्चे गुरु की कृपा है इस करके सच्चा गुरु करे कृपा कि मनुख उस एक अद्वैत रूपी परमात्मा नूं पछाण सकदा है।
1: मिथ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा
0: सज्जन दे थले गुरमुख फिर औंकड़ा है जिहड़ा परमात्मा ना वो साडा बोजम फ्रेंड है पक्का मित्र। मित्र तां कई हुंदे ने ना लेकिन एक ओ मित्र ने जिन्होंने आप कहने कि मेरा पक्का यार आड़ी गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की बाणी च रब नूं यार भी आखिया यार यार वेपरे आपण भाणा किस नीची संदा ते दीन दुनिया के माल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने आख्या यार जिहड़ा सानू सफर चंगा पट खेड़िया दा रहना तू मेरा मित्र है मैनू सफर भी चंगा है तेरी रहमत चाहिए। सज्जन का अंकड़ सानू यह कहता है आप वेख लो गुरमुख दुनिया

इस बुढ़ी मां का सहारा छोटा जिहा पुत्र मालक दा पाणा वरतिया दुखा ने इस माता नू केरा आण पाया पाणा इंज वरतिया के माता दा पुत्र गुजर गया ए मां ताहा मार मार के रो रही है इसका दुख देखिया नहीं जांदा किसे दसिया ऐ मां अपने पुत्र नू महापुरुषा दे दर से लै जा महात्मा जी दे दर से लै जा एक महापुरुषी इहो जे जीव इस दुनिया विच ने जिन्हां दी ओ मालक हुंदा है ओ तेरे पुत्र नू जीदा कर सकदे माता ने कंबदे हथां दे नाल अपने पुत्र दी लाश नू बाहां ते चुकिया अखां विच हंजू अपने पुत्र दे प्यार विच व्याकुल होई महापुरशां दे दर ते अपने पुत्र नू सामने रखिया ते रज के रोई आखण लगी तुसी बंदगी वाले पुरश हो दुनिया विच तुहाडी बड़ी शोभा है अज ए गरीबणी ते कृपा करो मेरा पुत्र मर गया है इसनू जिंदा करो महापुरशां ने आखिया जो एक बारी मर जांदा है मुड़के जिंदा नहीं हुंदा ऐ दुख कदे भी सुख विच नहीं बदल सकता पर इस माता ने अपनी

मां से पुत्र का रिश्ता ही ये हो गया है। पुत्र मरिया है से देखा नहीं जाता। महापुरुषा नु कई तरह के वचन बोल रहे है, महापुरुषा ने इस बुजड़ी माता नु समझाउन वास्ते

आखन लगा मेरा बिरद बापू जो इस करदा मार हो गुजर गया। इना चावलों वल देख के मेनू

जे लोड़े सदा सुख पाए, साधु संगत गुरहे बताए। इहु एक विधि है जो सानू दुखा तो बचा सकती है, नहीं ते पातशाह कहिंदे दुख किया पंडा खुलियां।

गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारी, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, सुर्ग मश पयाले, गावन तुदनो रतन उपाए तेरे, आठ साठ तीर्थ नाले, गावन तुदनो जोध महाबल सूरा, गावन तुदनो खाणी चारे, गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा।

नानक जंत बेचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समान एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिड़ाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अबरना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेव है जो सेव तुद जी जन नानक तिन कुरबाना

सब गवासी। जिन सेविया जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

पग नहीं चाले। हम देखा तहडू बियले मान एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाऊ। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक दिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै न काम। मिल साध संगत।

पूर्ण होए चत की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो व्रत पारा। हमरे दोष्ट सब तुम काव, आप हाथ दय मोहि बचाव।

अषाढ़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहो सो तम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उभरे आए, मरण काल का त्रास निवरे आए। हो जो सदा हमारे पछा, सरिया तुरजू करे हो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारी।

हमारा। जबन काल सब जगत बनायो, देव दयांत जशन उपजायो, आद अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझयो हमारा। नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संत नय दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै, जब करख करा करतारा, प्रजा धरत तव देही अपारा।

आकाश भेदना जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तो हे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा किहे बिद सजा प्रथम संसारा।

काल हो निकट नहि आए हैं। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तन कुमो हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहि उवारा। जैन नर नाम तिहारु कहा, दारिद दुष्ट दुख तेरा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दैले उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लेहु बचाई। सवैया पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। ओ राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न माने। सिमरत शास्त्र भेद सब, बहु भेद कहे हम एक न जाने। सरी असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहे बखाने। दोहरा सगल द्वार कौशा

आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां।

सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु भेटह जिस दियां हे वड़ियाइया कहे नानक सुनो संत सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सपागै कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया

जय। जन नानक चलह मिलंथा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ओ सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखी आए, करते कहे विचारू, तत कर गाव सोहिला सिवरे सजनहारू। तुम गाव हो मेरे निरपव का सोहिला, हों वारी जप सोहिला सदा सुख होए राव। नित नित जीअड़ संभालियन देखा गा देवनहारू, तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार। संबत साह लिखया मिलकर पावो तेल, देव सजना सीसड़िया जो होवै साहब सो मेल। कर करे हो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से देहिया बन। राग आसा महला पहला, छे कार छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तवे राव। बिसवे जसियां कड़ियां पहरां, थिती वारी माह हवा। सूरज को रुत अनेक, नानक करते के गेते वेस। राग तना श्री महला पहला, गगन मै थाल रव चंद दीपक बने। तारिका मंडल जनक मोती, धूप मल आनलो पवन चवरू करे। सगल बन राय फूलंत ज्योति।

हे संत जनों, जिस मनुख नूं इह यकीन हो जांदा है कि पारब्रह्म पूरन परमेश्वर सभना थावां विच मौजूद है, उस मनुख नूं सब थावां विच सुखी प्रतीत हुंदा है।

हे संत जनो, परमात्मा दी सिफत सलाह दी बाणी जिस मनुख दे अंदर आ बसी उसने अपनी सारी चिंता दूर कर ली। हे नानक, दया दा सोमा प्रभु उस मनुख उत्ते मेहरवान होया रहिंदा है जो मनुख उस सदा कायम रहन वाले प्रभु दा नाम उचारदा है। श्रोता जन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन रचना, स्थापना, महानता अते विशेषता केवल सिख कौम जां दूसरे हिंदुस्तानी भाईचारे तक सीमित नहीं, सगों इस समूह मनुख जाति लई गुरु साहिबान दा धार्मिक तोहफा है अते समुचे संसार दे धार्मिक इतिहास विच अपनी मिसाल साफ है। गुरु अर्जन साहिब जी ने इस ग्रंथ की संपादना करके इस धर्म ग्रंथ नूं सिख धर्म अते इसे श्रद्धालुआं तक ही सीमित अते विशेषित नहीं किया। असली मायने विच समूह संसार अते समुची मानवता दे सर्व सांझे हित, लाभ, उन्नति अते कल्याण नाल इसका संबंध जोड़ दिता। गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना किहो जिहे समय अते क्यों गुरु साहिब जी ने कीती, इस नूं समझण लई लजाओ अपनियां विरतियां नूं 15वीं सदी दे हालातां वल अते विचारो उस अजोके समय नूं जदों हिंदुस्तान दी धार्मिक, राजनीतिक अते समाजिक व्यवस्था अपनी अजोकती दे शिखर तक पुजी हुई सी। मौके दे हुक्मरान मुगल बादशाहां दे जुलम दी कहर सिखां ते सी। बोधी, जैनी अते हिंदू मत दे धार्मी अपनी हिफाजत करन विच असमर्थ सन। उस समय दा समाज वख-वख जातियां, धर्मां अते इलाकियां दे विषय उपर आपस विच वंडिया होया सी। इस वंड कारण समाज संगठन वास्ते कोई केंद्री सुरा कायम नहीं सी, जिस दे सिट्टे वजो विदेशी हमलावारां वास्ते खिलरे पुलरे असंगठित समाज नूं गुलाम बनाना बहुत सौखा सी। अजिहे अंकर समय भारतीय समाज दी अपनी सदियां पुरानी पछाण खुरदी जा रही सी। जल, जल अते जमीन मालकां दे हत्थों खिसकण लग पए सन। हौली हौली समुचे भारतीय समाज नूं अपनी होंद गुआचती महसूस होण लगी। श्रोतियो, इस संकटमयी स्थिति दा मुकाबला करन वास्ते समुचे भारत विच संत परंपरा ने जन्म लिया। वख वख इलाकियां दे संतां भगतां ने धर्म अते जाति दे नाम तों पैदा होईयां वंडियां नूं दूर करके समुचे भारत विच इक सर्व सांझा समाज उसारन वास्ते आवाज बुलंद कीती अते मानव मुल्लां दी प्रमुखता नूं स्वीकार करन ते जोर दिता। दक्खण तों उठ भगती लहर उत्तर वल

पर गुरु परंपरा इस भक्ति लहर तो पूरी तरह प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि गुरु परंपरा अति भक्ति संस्था के बखरे आधार सन, परंतु समय दियां प्रस्थितियां सांझियां सन। उत्तरी भारत विशेष करके पंजाब की धरती विदेशी हमलावरों द्वारा पूरी तरह नाल लताड़ी जा चुकी थी, इस सभ्याचार नु पूरी तरह नाल खत्म करने की नीति चल रही थी। दक्षिणी भारत का सभ्याचार

ظاهر للخمسة ظاهر للخمسة धार्मिक ज्ञान ऐसा कहता है कि जीवन मिले है परम जीवन की प्राप्ति ले। परम जीवन इसे जीवन इतना छुपे हुए है जिस तरह कोई दरख्त फल बीज के अंदर छुपे हुए है। एक बहुत बड़ा दरख्त फलों लदया हुआ एक छोटे जिहा बीज दे।

यानी शरीर भी मौत तो बहुत नहीं, शरीर तो सुर्ख उठी उठ जाएंगे, शरीर तो ज्ञान ऊंचा उठ जाएंगे। जैसे इस संबंधित जो धार्मिक खोज है, शरीर भी पूरी पड़ताल करने वाले कहते हैं धर्म शरीर भी।

पानी ना मिले मनुख नहीं रह सकता। लाजमी अंग है, भोजन ना मिले मनुख नहीं रह सकता, मृत्यु हो जाएगी, शरीर की मौत हो जाएगी। भोजन से पानी तो बिना कहने का ये तर्क है और सही है कि तन भोजन चाहिए है, तन पानी चाहिए। भोजन की भूख ने, पानी की प्यास ने, शरीरक लोड़ा ने मनुख को बड़ा विकास कराया है। अपनी असलियत को संसार में जितनी तरक्की हुई है वो शरीरक लोड़ा ने मनुख के कोलो तरक्की कराई है, भोजन की भूख ने विकास कराया है, पानी की प्यास ने उन्नति कराई। आदि मनुख पहाड़ों दिया कंदरावां देख रहा ते रुखां थले रहा, भयंकर गर्मी दे देना पहाड़ों दिया कंदरां विच रहना औखा हो गया, रुखां थले रहा। बारिश के दिनों में रुखां दे थले रहना भी औखा हो गया, तो किसने झुग्गी बनाई? जिस मनुख ने सब तो पहले जमीन से झुग्गी बनाई होगी उस वक्त का सब तो वड्डा वैज्ञानिक इंजीनियर

और दुख तो इस तरह बचाव करेगा। फिर लोड़ होर वधी, क्योंकि मनुख व्यक्तिगत जीवदा से कबीले परिवार जात पात कस्बे मुलक शहर इसे बढ़कर बहुत बात बेचोगी बहुत बेच। व्यक्तिगत जिंदगी से इस तरह जिम्मे पशु दी इस तरह लोड़ पशु नु भी महसूस होंगी है, पंछी नु भी होंगी, घोंसला बनाने उन्हों भी लोड़ महसूस है, भोजन की भुख उसनों भी मजबूर कर दी है, पंछी नु पालने चो निकलता है, सारा दिन रिजक की तलाश करता है, प्यास उसनों भी मजबूर कर देंगी है पानी की तलाश करोदिया भी शरीरक लोड़ा तो मनुख भी इतने ही रुकया होया कि मेरिया शरीरक ही लोड़ा शरीरक लोड़ ने पहाड़ों की कंदर चो इस कढ़िया क्योंकि गर्मी लगन लग पी रुखां थले आ गया और बारिश के रुख के बचाव करना औखा जो सारी रात मीह पैंदा तो बारिश दरखत तो भी टपकन लग पैंदा।

सारी उन्नति भोजन ने कराई है। हुण जिहड़ा मैं दूसरा नुकता तुहाडे सामने रखण लगा, क्योंकि गुरबाणी अति सूक्ष्म है, परमात्मा प्रभु का नाम प्राकृतिक लोड़ नहीं है। साइंटिस्ट ठीक कहते हैं, कहते शरीर की पड़चोल करके अभी देख लिया, कोई नाम की लोड़ नहीं, कोई राम राम जपण की लोड़ नहीं, कोई अल्लाह करने की लोड़ नहीं, कोई वाहगुरु करने की लोड़ ही नहीं शरीर की, कहता कि देख लिया, कोई धर्म ग्रंथों का पाठ करने की लोड़ ही नहीं।

है लग है आंसू आए नानक कहो ना सीजई बिना में पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त्र कारण बिखोट गवावे एक बिना दे दस भी हेरले तव मूड़ा को कहा करे जिस ठाकुर क्यों नहीं चारा ताको की जय सद नमस्कार जाके मन लागा प्रभु मीठा सरल सुखता हूँ मन रूठा जिस जाने अपना हुक्म

गुरु साहिब गुरु अर्जुन साहिब महाराज फरमाते हैं, देन हार प्रभ छोड़ के लागे आन सो आए। जो दाता है जिसका दिता सब कुछ ये वर्तदा है, उसनों त्याग के माया के स्वादा विच ये मनुख रचिया होया है, पचिया होया है। नानक कहो ना सी जई बिन नाम है पत जाए। इस माया के स्वादा विचों मन संतोष नहीं धारण करेगा, मन अशांत ही रहेगा और नाम दे ना जपन कारण इस मन दी इस जीव दी पत नहीं रहेगी, लाज नहीं रहेगी। ताकि गुरु साहिब हजूर फरमाते हैं, ऐ मनुख तू वाहिगुरु जी का नाम जरूर ही जप। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे, एक बस्त कारण बिखोट गवावे। वाहिगुरु जी ने इस जीव ते अनंत बख्शिशां कीतियां हन, पर इस जीव दी सोच इस प्रकार दी है कि जो वाहिगुरु जी तो मिलिया होया है उसका ते शुक्र नहीं करदा, जो नहीं मिलिया होया जो ऊनताई है उस लई ए रोस करदा है मैनू ए नहीं मिलिया। एक पीना दे दस पी हिर ले तो मूड़ा कहो कहां करे। ऐ मूड़े इंसान ऐ मूर्ख मन, जे वाहिगुरु तेरी मंग भी पूरी नहीं करेगा कि जो कुछ पहले दिता होया है वो भी खो लवेगा, फिर तू की करेगा। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा तांको कीजे सद नमस्कारा। जो वाहिगुरु सर्वशक्तिमान है जिदे अगे जीव दा कोई चारा नहीं चलदा, कोई जोर नहीं चलदा, ऐसे वाहिगुरु जी नूं तां नमन ही करना चंगा है। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहूं मन उठा। जिस मन विच वाहिगुरु जी दा नाम मिठा करके लग्या है, सर्व सुख ताहूं मन उठा, उस मनुख ने वाहिगुरु की कृपा नाल सारे ही सुखां दी प्राप्ति कीती है। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। वाहिगुरु जी ने जिस ते कृपा करके जिस मनुख कोलों अपनी भगती करवाई है, अपना नाम जपाया है, उस मनुख ने सतगुरु की कृपा नाल सारे ही सुखां दी प्राप्ति कीती है। अगनत सापनी देरास, खात पीत बरते आनंदोलास। अपनी अमान कछ बौर सौले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी परतीत आप ही खोवे, बौर उसका विश्वास ना होवे। जिसकी बस तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा मान माथे। उसकी चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अगनत शाह अपनी विरास, ओ शहनशाह दाता अनंत प्रेमियां नूं, अगनत प्रेमियां नूं अपनियां मेहरां करदा है, माया दे गफ्फे देंदा है, नाम दियां दातां बख्शदा है। खात पीत बरते अनदोलास, दित्तियां होईयां दातां नूं ए जीव हंडाउंदा है, खांदा है, पींदा है, मौज मस्ती विच रहिंदा है। अपनी अमान कछ बौर सौले, जे कदी ओ दाता अपनी दित्ती हुई दात नूं वापस लै लवे। अज्ञानी मन रोस करे, ज्ञानहीन प्राणी जो है ओ मन विच रोस करदा है,
अपनी परतीत आप ही खोवे। इस तरह अपना विश्वास जो वाहिगुरु जी के उत्ते इसदा है, उसकी परतीति एक खो लेंदा है, गवा देंदा है। बाउर उसका विश्वास ना होवे, फिर वाहिगुरु जी उस जीव ते विश्वास नहीं करदे हन। जिसकी बस्त तिस आगे राखे, चाहिदा तो ए है जिस दातार ने इस सब कुछ दिता है, असी उस दाता नू उस वाहिगुरु की अमानत ही मन के वर्तिए। प्रभ की आज्ञा मान माथे, वाहिगुरु जी का शुक्र करिए जिस वाहिगुरु ने इनिया दाता बख्शिया हन। उससे चौगन करे निहाल, इउं मनन नाल वाहिगुरु जी की बहुत प्रसन्नता होवेगी, ते ओ होर भी दाता देवेगा। नानक साहिब सदा दयाल, गुरदेव फरमाते ने ओ साहिब ओ शहनशाह अपने बच्चियां ते सदा ही दयाल रहिंदा है। अनको भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिर की छाया स्यों रंग लावे, ओ बिन से ओ मन पछतावे, जो भी से सो चरण हार, लप करो तैं अंध अंधार, बटाऊ स्यों जो लावे ने, ताको हाथ न आवे के, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। अनक पांत माया के हेत, माया दे रंग बहुत सोने ने, और अनंत रूप करके माया इस जीव नू व्यापदी है। सर पर होवत जान अनेत, पर ये माया दी सुख जितने भी हन वो नित रहन वाले नहीं हन। बिर की छाया स्यों रंग लावे, जिवें एक वृक्ष की छाया हुंदी है, ते कोई छाया नाल प्यार कर लवे, ओ बिन सह ओ मन पछतावे। वृक्ष की छाया वृक्ष दे कोल हमेशा नहीं रहिंदी, ता छाया नाल प्यार करन वाला, माया नाल प्यार करन वाला जीव फिर पछतावेगा। जो दिसै सो चालन हार, इस जगत ते जो कुछ भी दिसदा है वो तो मिथ्या ही है, जान वाला है। लप करयो तैं अंध अंधार, इस अज्ञानता विच ए जीव माया नाल लिपटिया होया है। बटाऊ स्यों जो लावे ने, मुसाफर नाल जो प्रेम कर लवेगा, मुसाफर ने तो एक दिन जरूर विछड़ना है। ताको हाथ ना आवे के, मुसाफर नाल प्रीत पाया मोह कीतिया, दसो इस जीव नू की हाथ विच आवेगा, की कुछ प्राप्त होवेगा। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, ए मनुख तो ए मनन कर कि वाहिगुरु दा प्रेम ही सुखदाई है। कर कृपा नानक आप ले लाई, जे वाहिगुरु जी मेहरबान होण तां ए प्यार कीता जा सकदा है। मिथ्या तन तन कटों सुलाया, मिथ्या हमें ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साधक की शरण, नानक जप जप जीवे हर की शरण। मिथ्या तन दौलत परिवार, हजूर फरमाते ने इस सब मिथ्या है,
मिथ्या हमने ममता माया, माया का मोह भी मिथ्या है। मिथ्या राज जोबन तन माल जवानी तन ते जो प्रॉपर्टी की प्राप्ति है ये भी मिथ्या है। मिथ्या काम क्रोध विकराल, काम क्रोध काया को गाले ज्यो कंचन सुहागा ठाले ये भी मिथ्या है। मिथ्या रथ हस्ती असुर बस्तरा, रथ हाथी घोड़े और वस्त्र जो असी पहनते हाँ ये भी मिथ्या है। मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, माया का जितना भी रंग है जो असी मानते हाँ गुरु साहब फरमाते ने यह भी मिथ्या है, हमेशा रहने वाला नहीं है। मिथ्या त्रो मो अभमान, किसे ना त्रो करना ठगी करनी, मो करना मान करना अपने आप से हजूर कहते ने यह भी मिथ्या है। मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अपने आप से हंकार करना अपने आप से मान करना ए जीव ए भी मिथ्या है। अस्थिर भगत साध की शरण, साध संगत विच आके वाहिगुरु जी का नाम जपना ए स्थिर है, ए मिथ्या नहीं है। नानक जप जप जीवे हर के चरण, कांति गुरु साहब जी का ए मत है कि हे प्राणी तू वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी का नाम ही जपिया कर। मिथ्या सरवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्द को हिरें, मिथ्या नेत्र पेखत पर तिरिया रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को धावे, मिथ्या मन पर लोग डुबावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकार, मिथ्या बास लेत विकार बिन बूझे, मिथ्या सब पय सफल रे नानक हर हर नाम रे। मिथ्या सरवण पर निंदा सुने, देही नू जो कन लगे ने जे एक कन निंदा सुनदे ने हजूर कहंदे ने फिर मिथ्या ने। मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिरे, ओ हथ भी मिथ्या हन जो प्राया तन स्वीकार कर दे हन। मिथ्या नेत्र पेशत पर चिरिया रूपाद, देही नू लगे हुए नेत्र भी मिथ्या हन जी ओ प्राया रूप वेखदे हन। मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद, ओ रसना भी मिथ्या है जो भोजन स्वाद लै लेके खांदी है ते वाहिगुरु जी का नाम नहीं जपदी। मिथ्या चरण पर उपकार को धावे, ओ पैर भी देही दे मिथ्या हन जो गुरु चरणा वल नू ता नहीं वध दे, साध संगत वल ता नहीं जांदे पर विकार हित किसे गलत थाऊं जांदे हन। मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, ओ मन भी मिथ्या है जो देही विच रहिंदा है सुख ता मानदा है पर लोभी है। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, उस शरीर भी मिथ्या है जो पर उपकार नहीं करदा। इस जीव नू ता सब दा भला मंगना चाहिदे, जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लाइन हर स्यों लैन मलाए। मनुख नू चाहिदे नाम जपे सब दा भला मंगे, जा फिर संगत दी सेवा करे। सेवा ते सिमरन दो ही काम करन वास्ते ए मनुख देही विच आया है। मिथ्या बास लेत बिकारा, देही दा नख सुगंधी लेंदा है वासना दी काम दी
मोगी लोभ दी, इस सब मिथ्या है। इस नक नूं तां गुरु चरणां दी सुगंधी लैणी चाहीदी है, गुरु प्यारे लगने चाहीदे हन। पर जे ऐसा नहीं हुंदा तां हजूर कहंदे ने नक दा ए सुंघणा भी मिथ्या है। बिन बूझै मिथ्या सब भए, इस मनुख ने जे वाहिगुरु नाम नहीं जानिया, जे वाहिगुरु जी दी पछाण नहीं कीती, जे वाहिगुरु जी दे नाम नूं हिरदे विच नहीं रखिया, तां फिर इस देही दे विच जो सुख है, देही नूं जो दस इंद्रे लगे ने, पंज ज्ञान और पंज कर्म, इन्हां दा सुख भी मिथ्या ही हो जावेगा। सफल दे नानक हर हर नाम लै, ओ देही सफल हो जांदी है, उसका जीवन सकारत हो जांदा है, जो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी का नाम जपदा है। कारण कि ये मनुख देही वाहिगुरु नाम जपण वास्ते ही सतगुरां ने बख्शी है। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस देही पाई, इस देही कौन सिमरै ने, सो देही भज हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ। बिरथी साकर की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंग, मुख आवता की दुर्गंध, बिन सिमरण दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के निरार्थ दाम, तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक तन की बल बल जाओ। बिरथी साकत की आरजा, साकत मनमुख नूं कही दे, जो वाहिगुरु जी का नाम नहीं जपदा ते अपनी जिंदगी नूं बेअर्थ गवा देंदा है। हजूर कहंदे ने साकतां दा जीवना ही बेअर्थ है। सच बिना के होवत सूचा, वाहिगुरु जी का नाम ही सच्चा है, इस सच नूं धारण करन तों बिना ਇਹ ਜੀਵ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਨ ਅੰਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਰਗੰਧ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। पर जी वाहिगुरु जी का नाम नहीं जपया जाता, फिर यही देही वासना दे अंदर बदबूदार हो जाती है। बिन सिमरण दिन रैन बिरथा बेहाए, वाहिगुरु जी के नाम सिमरण तो बिना ये दिन और रात ऐवें ही बीतते हैं, भाव नाम जे कोई नहीं जपता, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, जिवें पानी तो बिना बारिश तो बिना खेती विच कोई उत्पन्न नहीं हुंदा, एन इसे ही तरह ये देही तां वाहिगुरु जी दा नाम जपण वास्ते प्राप्त होई। पई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरी किसे ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम। वाहिगुरु जी दे सिमरन तो बिना जितने भी मनुख कार्य करदा है ओ बेअर्थ हन। ज्यों किरपन के निरारस दाम, जिवें कंजूस दा धन दबिया ही रह जांदा, निर अर्थ हो जांदा, किसे अर्थ नहीं लगदा, किसे दे कम नहीं आउंदा, एन इसे तरह जो वाहिगुरु जी दा नाम नहीं जपदे हन, उना दा जीवन किसे अर्थ विच नहीं आउंदा है। तन तन ते जन ओ गुरमुख प्यारे, ओ गुरु के लाल, ओ गुरसिख तनता दे योग हन, जिन्हां दे हिरदे अंदर वाहिगुरु जी दा नाम वस गया है।
राम नाम उर्मी गयो जानकी सामनी कोए जे सिमरत संकट मिटे दर्श तोहार हुए नानक ताकी बल बल जाओ। हजूर फरमाउंदे ने गुरु अर्जन साहिब असी सदके सदके जाने हां जिन्हां दे हिरदे विच वाहिगुरु जी दा नाम वस गया है। रहत अवर कछ अवर कमावत

संपीन और उपदेश है आप न करे आवत जावत जन्म में मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी।

पराता रहत अवर कछ अवर कमावत। रहनी गुरसिखा वाली होवे, भगता वाली होवे, पर मन विच संगता होवे, मन विच लोभ होवे, मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत। बारों प्रेमी दिसदा होवे, गुरु का सिख दिसदा होवे, ऐं लगदा होवे जिवें इह गुरु दा प्यारा है, पर मन तो इहदा जीवन कुछ होर है। जानन हार प्रभु पर बीण, ऐ मनुख चंगी तरह इह जान लई कि वाहिगुरु अंतरयामी हन। बाहर भेस न काहूं भीण, बाहर दे भेस ते बाहर दे पहरावे ते वाहिगुरु जी का मन प्रसन्न नहीं होवेगा। अवर उपदेश है आप न करे, उपदेश करन वालियानू पहला अपने मन का ज्ञान होना चाहिए। प्रथमे मन पर बोधो अपना पाछे अवर जावे, राम नाम जापे हृदय जापे मुखी सगल सुनावे। जो दूजिया नू उपदेश करते हैं, नाम जपन वास्ते आखते हैं, खुद नाम नहीं जपते। आवत जावत जन में मरे, गुरु साहिब फरमाते ने इहा जी प्राणी जिन जीवन बाहरों कुछ हो रहे अंदरों कुछ हो रहे, वो पल सागर विच डुबे हुए हैं, मुक्ति द्वारे नहीं पहुंचते हैं। जिसके अंतर बसे निरंकार, जिसके मन बुद्धि विच वाहिगुरु जी वस जान, जिदे चित विच वाहिगुरु जी का नाम वस जावे, जिसनों वाहिगुरु जी दे नाल प्रेम हो जावे, जिसकी सीख तरे संसार, उहे कदे सिख्या देवे उपदेश देवे तां जगत दा उधार हो सकदा है। जन नानक तूर मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जप है अवर नाम जपावे। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, हे वाहिगुरु जी जड़े तेन पा गए हैं, जड़े तेन अच्छे लगते हैं, उन्होंने तू अपनी सोझी दिती है, उन्होंने तू अपनी पछाण भी करवाई है। नानक उन जन चरण प्राता, गुरु साहिब जी फरमाते हैं उन्होंने चरणा दे असी दास बनना चाहते हाँ। हे वाहिगुरु जी, जिन्हां ते आप दी कृपा है और जिन्हां नू आप दी पछाण होई है। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप आप करत नबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव सियाणप सगल ते रहे तो सब कछ जाने, आत्म की रहे तो जिस पावे तिस लय लड़लाए, थान थनंतर रहा समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, हे वाहिगुरु जी आप सब कुछ जानते हो, फिर भी मैं आपके चरणों च बेनती करता हाँ। अपना किया आप ऐ माने, तुसी अपने बनाए हुए जीवानु आप ही मान बख्श रहे हो। आपे आप करत नवेरा, आप ही तुसी धर्मराज दी सरूह विच जीआं दे कीते हुए कर्मां दा हिसाब करदे हो। किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, पाछा किसे नू तुसी दूर जनांदे हो। कोई कर्मां करके तुहाथों दूर है, कोई कर्मां करके तुहाडे नेड़े है। जिन्हां ते तुहाडी कृपा है वह बंदगी करदे हन, वो तुहाडे कोले हो जांदे हन। जो बंदगी करन विच ढिल्ले हन, पातशाह वो समझदे हन कि तुसी बहुत दूर हो।
ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਾਸੀ ਹੋ। ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਉਪਾਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਰਹਿਤ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਆਤਮ ਘੀ ਰਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲਏ ਲੜ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਿਆ ਸਮਾਏ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਹੋ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ।

ओकर काम क्रोध अर लोग मोह जाए आम देव नानक प्राप्त शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जैन प्रसाद छत्ती अमृत खाए ठाकुर को राख मन नाहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पाए जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे तिहाय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा तिहाइये आमन योग। हजूर गुरु अर्जन साहिब फरमाते ने इस मन विच काम क्रोध लोभ मोह ते हंकार पांच दुष्ट वस्ते हुए हैं, जिस कारण मन और तन बहुत दुखी रहिंदा है। हे वाहिगुरु जी, मैं आपकी शरण विच आया हाँ, आप कृपा करके नाम की दौलत बख्शो, नाम जपाओ। नाम के जपण नाल ही काम क्रोध लोभ मोहंकार मिट सकते हैं ते मन विच सत वस सकता है। अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए, जिस वाहिगुरु की कृपा नाल ही जीव तू छत्ती प्रकार का भोजन रस लेके खांदा है, तिस ठाकुर को रख मन माए उस वाहिगुरु का शुक्र कर, उस वाहिगुरु नू अपने मन विच रख, उस वाहिगुरु का नाम जप, उस वाहिगुरु का ध्यान सदा ही करदा रहो। जय प्रसाद सुगंधत तन लावे।

सुखमंदर जिस वाहिगुरु की कृपा नाल इस तो देही दे सोहने मंदिर विच सुखी रह रहा है। जिसें ध्याए सदा मन अंदर उस वाहिगुरु जी का जाप कर, उस वाहिगुरु जी का ध्यान कर, जिसकी बदौलत मन और देही सुख विच है। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना जिस वाहिगुरु की कृपा नाल तू ग्रस्त विच सुखी है, माया तारी है, बच्चिया विच तन करके हर प्रकार नाल सुखी वसदा है। आठ पहर सिमरो तिस रसना उस वाहिगुरु का सिमरन तो रस लै लैके कर, प्रेम नाल कर, श्रद्धा नाल कर, पाई रे राम कहो चित लाए। जे प्रसाद रंग रस भोग जिस वाहिगुरु जी की कृपा नाल तो रंग तमाशिया का भोग भोगदा है भाई। नानक सदा ध्याईए ध्यावन योग ओ वाहिगुरु का ही नाम सिमरन करिए, ओ वाहिगुरु जी का ही केवल एक आसरा है। कारण कि ये सारी सुख जो मन और देही भोग रहे हैं ये वाहिगुरु जी दे ही दिते हुए हैं। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे किसे त्याग कट और लुभावे, जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर तन का जस गावी। जे प्रसाद तुझ सब को माने मुखता को जस रसन बखाने, जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगे मान पावे नानक पातशाही कर जावे। जे प्रसाद जिस वाहिगुरु की कृपा नाल तू वस्त्र उड़ दें, जिस वाहिगुरु की कृपा नाल तेरी देही सुंदर है, तिसे त्याग कत अवर लुभावे, उस वाहिगुरु जी का त्याग करके तू किसी होर वस्तु नाल क्यों चिमड़िया होया है। जे प्रसाद सुख सहज सोही जय जिस वाहिगुरु की कृपा नाल तेरा जीवन सुखमय है। मन आठ पैर तांका जस गावी, जे उस वाहिगुरु का जस उस वाहिगुरु का सिमरन तो अठो पैर स्वास स्वास कर, उठत बैठ सोवत नाम कहो नानक जन के सदकाम। जे प्रसाद तुझ सब को माने जिस वाहिगुरु की कृपा नाल तेरी इतनी मानता है, मुखता को जस रसन बखाने इस देही दे मुख नाल रस लै लेके प्यार नाल तू वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु बोल। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म जिस वाहिगुरु की कृपा नाल तेरा विश्वास बनिया होया है, मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म, ये विश्वास वाहिगुरु जी की बहुत बड़ी देन है। ताकि तू केवल उस वाहिगुरु जी का ही होके रहो, उस वाहिगुरु जी का ही नाम सिमरन कर। प्रभ जी जपत दर गै मान पावे, वाहिगुरु जी का सिमरन कीतिया उसकी दरगाह विच तैन मान मिलेगा। नानक पत से तीन घर जावे, तू पतवंता होके बड़े मान नाल वाहिगुरु जी दे घर जावेगा, आनंदपुर वसेगा। जिनी नाम से आया गए मुसकत खाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जे प्रसाद आरोग कंचन देही लेलाओ तिस राम सुनेही, जे प्रसाद तेरा ओला रहे तो मन सुख पावे हर हर जस कहे तो। जे प्रसाद तेरे सगल शिरदर ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभता कै, जे प्रसाद तुझ को न पहुँचे मन

ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ बुद्धि नानक तन की भगत करे जे प्रसाद अरोग कंचन देही देही दा रोग रहित होना एक वड्डी नेमत है वाहिगुरु जी दी वड्डी बख्शिश है जिस वाहिगुरु दी कृपा नाल तेरी देही विच कोई रोग नहीं है ले वल्लावो किस राम स्नेही उस वाहिगुरु नाल जो रमिया होया है प्यार करो भाई सिमरन करो भाई वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु बोलो भाई जे प्रसाद तेरा ओला रहे तो जिस वाहिगुरु दी कृपा नाल तेरे अवगुणा नू कोई नहीं वेखदा तेरी लाज रह जावे तेरी पत रह जावे मन सुख पावे हर हर जस कहे तो तेरा मन होर भी वधेरे सुख पावेगा जे तू वाहिगुरु वाहिगुरु जी दा नाम सिमरन करें जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके जिस वाहिगुरु दी कृपा नाल तेरे सारे अवगुण ढके होए हन मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके तांते ऐ मन इहो जे वाहिगुरु दी शरण नू प्राप्त करो जिस दी कृपा नाल तेनू इतना मान मिलिया है जे प्रसाद तुझको न पहुंचे जिस वाहिगुरु दी कृपा नाल तेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता है मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे एहा जे बख्शिंद वाहिगुरु दा सिमरन ते हर स्वास नाल करना चाहिदे जिना सास ग्रास ना विस्तरे हर नामा मन मंत वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु बोलो जी जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक तां की भगत करे जिस वाहिगुरु दी कृपा नाल तेनू ये देही मिली है इस विच मन मिलिया है मन दे दस दास हन दस इंद्रे हन पंज ज्ञान और पंज कर्म इंद्रे जिन्ना थी मन देही नू लै के रस कष्ट मानदा है ते सुख भोगदा है ऐ मन तू ऐसे सुखां दे देन वाले दातार वाहिगुरु जी दा सिमरन जरूर करया कर जे प्रसाद आपो खन पहरी जय मन तिस सिमरत कौ आलस की जय जे प्रसाद असुर हस असवारी मन तिस प्रभ को कहो न विस्तारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोहि प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई ओठ तो बैठ साध तिसे तिहाई जिसे तिहाई जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखे जे प्रसाद आपू खन पहरी जे जिस वाहिगुरु दी कृपा नाल तू सुंदर गहने पहरदा है मन तिस सिमरत कौ आलस की जय उस वाहिगुरु जी दा सिमरन करन विच तू ढिला क्यों पैना है आलस क्यों करदा है शुक्र करया कर शुक्र करया कर वाहिगुरु तेरा शुक्र है वाहिगुरु तेरा शुक्र है वाहिगुरु तेरा शुक्र है जे प्रसाद असो हस्ती असवारी जिस वाहिगुरु दी कृपा नाल तेनू वाहन दा सुख होया है घोड़े हाथियां दे रखण दा सुख होया है घोड़ा मोटरसाइकिल नू कहिंदे ने हाथी कार नू कहिंदा है जिस वाहिगुरु दी कृपा नाल इतने सुखदाही वाहन मिले हैं उस वाहिगुरु दा सिमरन जरूर करो मन तिस प्रभ को कबो ना विस्तारी ऐसे प्रभु दा कदी नाम ना विस्तारी जिस वाहिगुरु ने इतने प्रकार दे सुख दिते हैं जे प्रसाद बाग मिलख तना जिस वाहिगुरु दी बख्शिश नाल बागीचे
जागीरा तन प्राप्ति है। राख परोए प्रभ अपने मना, ऐसे वाहिगुरु दा नाम तो हर श्वास विच परो के रख। मन मंदर तन वेश कलंदर, कट ही तीर्थ नाम, एक शब्द मेरे प्राण विस्त हैं, बहुत जन्म नाम। वाहिगुरु जी दा नाम हर श्वास विच वस जावे, ए यतन करया कर। जिन तेरी मन बनत बनाई, जिस वाहिगुरु ने सुंदर शरीर बनाया, मन बनाया, ज्ञान और कर्म इंद्रियां दा सुख दिता है, इस देही में जिस वाहिगुरु ने प्राण चलाया है, प्राण कारण, ज्ञान कारण, कर्म इंद्रियां कारण, जिस वाहिगुरु ने तेनु इन्ना सुख दिता है, उस वाहिगुरु जी का सिमरन जरूर कर। उठ तो बैठ तो सद तिसे त्याई, उस वाहिगुरु का ध्यान कर जो तेरा श्वास चला रहा है, जो अखां विच बैठा तेनु रंग तमाशे दिखा रहा है। तिसे त्याई जो एक अलख है, उस वाहिगुरु का ध्यान कर, उस वाहिगुरु दे नाल अपनी सुरत नूं टका, जो अलख है, लखिया ना जान वाला है, अगोचर है, ज्ञान इंद्रियां तो परे है, उस वाहिगुरु दा ध्यान कर। इहां उहां नानक तेरी रखै, जो लोक और परिलोक विच तैनू सुख देन वाला है, मान देन वाला है, उस वाहिगुरु जी दा सिमरन कर। जे प्रसाद करें पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तो आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सास सास चित्तारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी की जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी परत रहे, गुरु प्रसाद नानक जस कहे। जे प्रसाद करें पुन बहुदान, जिस वाहिगुरु दियां दित्तियां होईयां दाता विच्चों तू दान और पुन करदा है। मन आठ पैर कर तिसका ध्यान, उस वाहिगुरु दा ध्यान कर, क्योंकि दाता देन वाला वाहिगुरु ही है, तू दाता नहीं है, तू किसे नूं दान नहीं कर सकदा। दान करन वाला ते दाता वाहिगुरु इको ही आप है। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, जिस वाहिगुरु जी दी कृपा नाल तू उच्चे आचरण वाला है। तिस प्रभ कौ सास सास चितारी, उस वाहिगुरु जी दा नाम सदा चित विच रख। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु दा नाम सिमरन करया कर। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, जिस वाहिगुरु ने सुंदर देही दित्ती है, सोना विचार दित्ता है, गुरु दी मत दित्ती है, अमृत दी दात दित्ती है, संगत विच बैठना दित्ता है, उस वाहिगुरु दा नाम जरूर जप। सो प्रभ सिमरो सदा अनूप, ऐसा सुंदर वाहिगुरु, ऐसा प्यारा वाहिगुरु, ऐसा मिठा वाहिगुरु, ऐसा सुगुण वाहिगुरु, ऐसा जीवन दाता जरूर सिमरन करया कर। जे प्रसाद तेरी नीकी जात, जिस वाहिगुरु की कृपा नाल तेरा कर्म उच्चा होया है, तेरा जन्म जाति उच्ची हुई है। सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, दिन और रात अठो पैर ऐसे वाहिगुरु दा सिमरन करो। जे प्रसाद तेरी पत रहे, जिस वाहिगुरु की कृपा नाल तेरी लाज रह जावे, बिना नाम तो लाज नहीं रहिंदी। अवर करतूत सगली जमडाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। जिस वाहिगुरु की कृपा नाल तेरी पत रहेगी, तेरी लाज रहेगी,
उस वाहिगुरु दा जस तो जरूर कहो, उस वाहिगुरु दे गुण जरूर गाओ, उस वाहिगुरु जी दा नाम सिमरन कर दे रहो। जय प्रसाद सुनाए करण नाद, जय प्रसाद पेखें विस्मार, जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना, जय प्रसाद हस्त कर चले, जय प्रसाद संपूर्ण फले, जय प्रसाद परम गत पारे, जय प्रसाद सुख सहज सुमारे, ऐसा प्रभु त्याग और कत लागो, गुरु प्रसाद नानक मन जागो, जय प्रसाद समय करण नाद, जिस वाहिगुरु की कृपा नाल तेरे कान शब्द सुन रहे ने, जिस वाहिगुरु की कृपा नाल तू मन करके वेखदा है, देही करके वेखदा है, ते प्रसन्न चित हुंदा है। जे प्रसाद सुने करण नाद, जे प्रसाद पेखै विस्माद, जे प्रसाद बोलै अमृत रसना, जिस वाहिगुरु की कृपा नाल तेरा बोल मिठा है। जय प्रसाद सुख सहजे बसना, जिस वाहिगुरु की कृपा नाल तो सुख निंद्रे दा सुख भोगदा है। जय प्रसाद हस्त कर चले, जिस वाहिगुरु की कृपा नाल तो हत्था और पैरा करके चलदा है। जय प्रसाद संपूर्ण फले, जिस वाहिगुरु की कृपा नाल तेरे कीते हुए कर्मा नूं चंगा फल लगदा है। जय प्रसाद परम गत पावे, जिस वाहिगुरु की कृपा नाल मेहर नाल दया नाल तू परम मोक्ष नूं प्राप्त कर सकदा है। जय प्रसाद सुख सहज सुमावे, जिस वाहिगुरु की कृपा नाल सुखां दे समुंदर वाहिगुरु विच तो लीनता हासिल कर लेना है। जिस वाहिगुरु की कृपा नाल सहज पद प्राप्त किया जा सकता है, उस वाहिगुरु जी का सिमरन तू जरूर कर और अपने सुते हुए मन नूं जगा ले। मन अंदरों सुता होया है, बाहर करके देही नाल जागदा है, संतर है, होश विच है, पर मन अपने स्वरूप स्वाय स्वरूप सत स्वरूप आत्मा नूं नहीं जानदा, इस करके सुता होया मनिया गया है। ए जे मन प्रेम नाल वाहिगुरु नाम जपे ता इस मन नूं ज्ञान हो सकदा है कि इस मन दा सुते स्वरूप कैसा है। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, मन हर जी तेरे नाल है गोरमति रंग मान। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो विस्तार, जे प्रसाद तेरा प्रताप, अरे मन मूल तू तां को जाप, जे प्रसाद तेरे कारज पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे, जे

बाबा फरीद जी दे वतन, आज मिलावा शेख फरीद, ताकम कुंडड़ियां मनो मचिंदड़ियां। रब नाल तेरा हुणे ही मिलाप हो सकता है जे एक कम कर लें। इंद्रिया राही जो वासनावां दीआं चंगाड़ियां उठ रहीआं ने, इन्हां नूं रोक लै। ताकम कहिंदे रोकणा, मन दीआं मचाईआं होईआं वासनावां दीआं चंगाड़ियां जदों रुकणगीआं उसे समय परमात्मा प्रगट होएगा। ते सवाल पैदा हुंदा, इंद्रियां शांत किवें होवन? इको जुगत है, बारंबार बार प्रभ जपी है, पी अमृत ते मन तंत्र पी है। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। जे श्वास बार बार लै रहे हैं फिर नाम भी बार बार जपना पड़ेगा। ज्यों ज्यों नाम जपता जाएगा, नाम जपता जाएगा, इंद्रियां शांत होंदिया जाएंगी, विकार छुटते जाएंगे। बबीहे नूं मैं देखदा हां, एक रस होकर एक तक प्रयोग प्रयोग करी जा रहा, निरंतर करी जा रहा है। अंदर उसके स्वांति बोंदी प्यास है, आस नहीं छड़दा। तो की हुंदा, उसकी आस पूरी हो जाती है, प्यास बुझ जाती है। सतगुरु भी कहते हैं, गुरसिख पुत्रो, मैं तुहानू वाहिगुरु गुरमंत्र दिता ना, बस तुसी वाहिगुरु वाहिगुरु उठते बैठते तुरते फिरते किरत करदे आ, वाहिगुरु वाहिगुरु जपते जाना जपते जाना। आस रखना, एक दिन तुहाडी भी प्यास जरूर बुझेगी। तेरा नाम बूंद हम चातरिक ते तहारे, तुसी भी दबीहे बन जाओ ते तेरा नाम बन जाए स्वांति बूंद, इंद्रियां शांत हो जाएंगी। फिर तुसी भी बोलोगे, नाम तुल कछवर ना होए, नाम बराबर होर कुछ भी नहीं। बाबा फरीद भी बोले, जो रस आया, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियों माझा दुध, सबे वस्तु मिठियां रब ना पुजन दुध। तेरे नाम तो वध मिठा कुछ नहीं। सतगुरां ने भी बाणी विच कहा, सबे वस्तु कौड़ियां सच्चे नौ मिठा, जिन्हां चखिया एक निरना कीता। तो निरना की सी, हर दिन कछु ना ला गई, भगतन को मीठा, आन स्वाद सब फीकिया, कर निरनो दीठा। और फिर आपां भी जपिए, जिवें जपन वालिया ने जपिया, कैसा ध्यान जोड़िया होएगा, ये रस किवें मिलिया? राम जपू जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जपयो हर जैसे।

जो 8 तरीक तक है, 8 तरीक नु सवेरे 10 ने वापस जाना है। आप सारे नु बेनती है 8 तरीक नु एतवार नु सवेरे 9 बजे इस स्थान विखे महान अमृत संचार से संबंधित हो रहे हैं। गुरु कृपा करे, गुरु की बख्शिश के पात्र बनिए, सारे गुरु की आशीष के पात्र बन, गुरु वाला बनिए, गुरु के दस्से हुए राह पे तुर के जीवन सफलता कर सकिए। ते गुरमुख प्यारे शब्द कीर्तन सत्कार वजो माया बेटा कर गए ने, सतगुरु नामदान बख्शन ये सारी सेवा। एक एक पैसा जो है श्री गुरु हरकृष्ण साहब चैरिटेबल आई हॉस्पिटल ट्रस्ट विखे, जिथे गरीब लोड़वंद मरीजों के चैरिटी बेस से फ्री इलाज किया जाता है, आई कैंप लगते हैं। 100 बैड की नवी हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है उसारी के अधीन है। पंथ रत्न भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खालसा खाने वाले ने जो प्रोजेक्ट रंभ किए, आप जी का प्यार तस्वीर सत्य सहयोग सदका गुरु कृपा नाल ये सेवावान निरंतर जारी ने। आप जी आशीषा बख्शनिया, इस प्रकार गुरु की रहमत नाल आप जी की आशीष प्राप्त होंगी रहे, सेवा हो सकेगी। आओ आनंद साहब जी का पाठ उपरंतर।

रत्ना रतन पदार्थ बहु सागर प्यारा इथे हृदय अंदर शरीर के अंदर कीमती रतन परमात्मा ने पाके भेजे हैं ते किन्हां नूं खजाना मिलेगा। बाणी गुरबाणी लागे तीन हथ चढ़िया रहा, गुरबाणी लागे तीन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडार। जिन्हां जिन्हां ने दिल की खोज की थी अंदर गए, गुरबाणी द्वारा सिर सलाह करते गए करते गए करते गए, वाहिगुरु गुरमंत्र द्वारा जपती कई मारते गए एक दिन अंदरों ही खजाना मिले। फिर तुसीं भी बोलोगे प्यो दादे का खोल डिठा खजाना तो मेरा मन पया जाना। त्रिपत पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम पाया, फिर त्रिपत हो जाओ रज जाओ। भगत भंडार गुरबाणी ला ये भगती के खजाने गुरबाणी विचों प्रगट होणगे, गुरबाणी नूं कमाउणा पएगा। गावत सुनत कमावत निहाल, जिन्हां गुरबाणी नूं गाया सुन के कमा लिया वो निहाल हो गए। दास साज विशा सी जिन्हां गुरबाणी की टेक लैके सिमरन किया उन्हां नूं अंदरों ही यह खजाना मिलेगा कि जुग दास नूं भी प्राप्त हो सके। मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहा हूँ, रसना द्वारा वाहिगुरु वाहिगुरु बोलीए। तो भाई साहब कहते सन गुरबाणी द्वारा फुरनिया परे करते जाइए, पुछ करते जाइए, शब्दों की टेक लैके गुरबाणी की टेक लैके संकल्प आन फुरने आना परे तकते जाइए। बस गुरु कृपा करेगा, धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बख्शी हुई इस जुगत अनुसार साडा आया होया सफला हो जाए। इतनी सेवा प्रवान करनी कल पौने 7 बजे तो 7:30 बजे तक इस पितर स्थान विखे सिमरन के प्रोग्राम रखे गए हैं। आपां रल मिल के सिमरन में बैठांगे, उपरंत गुरुद्वारा दीक्षी विखे परसों तो रात को 8 बजे तो 9 बजे तक लगातार 7 तरीक तक उत्थे कीर्तन विचारां रखियां गईयां ने, ते सवेरे 5 बजे तो 6 बजे तक रोजाना 8 तरीक तक सिमरन साधना के प्रोग्राम हो रहे हैं। 8 तरीक महान अमृत संचार प्रचार दौरे की समाप्ति से ठीक सवेरे 8 बजे अमृत का बाटा तैयार होना है। जेडे अजे तक गुरु वाले नहीं बने आओ सतगुरां दीआं बख्शां वरत रहीआं हन, झोलियां भरीए सतगुरां दीआं शीशां दे पात्र बनीए। इन्हां समागमां विच आउण दा इक्को मनोरथ है असीं गुरु दीक्षा प्राप्त करके गुरु अनुसार गुरु दे दस्से होए राह ते तुर के अपना जन्म सफला बनाइए जी। नितनेम कर रहे हाँ, मुबारक है संगत विच वीर जानाने हाँ, पर जे गुरु वाले नहीं बने अजे तक अमृत नहीं छकिया ना साडी भगती अधूरी है, फल नहीं जे मिलना। मनमुख भगत करे बिन सतगुर, बिन सतगुर भगत ना होवे राम। इसलिए आओ गुरु दीखिया प्राप्त करके पंजा प्यारियां राहें मोर लवाइए, फिर गुरप्रसाद वरते शब्द की कमाई करके अपना आया हुआ सफला हो जाए जी। अति धनवाद धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, सूह प्यार वाले संगत का जिन्होंने प्यार बख्शिश किया है, इतने दिनों तो लगातार आप जी बहुत प्यार दे रहे हो। आओ ग्रंथ साहब जी का पाठ पूर्ण करता है।

0: गुरु हरि सहजी
1: धन गुरु हरि सहजी
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

अमृत शाड विषय विकसाय माया मोह परम भयपूले सतदाराशा प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत के गुरु रामदास राखो।

जप जगदीश ईसा जय जय। मोह रहत बेकार थाके पंच ते संग टूटा, कहो नानक तिन खनिया वंजा।

को विद्या विकम विचार गावे को साज करे तन से गावे को जी लय फिर गावे को जप दिस दूर गावे को वेख हाजर दूर कथना कथी न आवे टोट कथ कथ कथी गोटी गोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाही जुगा जुगंत्र खाही काहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक बिगस वे परवार साचा साहेब साच नाई पाख्या भाव अपार आखे मंगे देह दे लात परे दार फेर के अगर रखी है जत दिसा दरबार मोह के बोलन बोली है जत सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाऊ वड़ियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सुजियार थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जन सेव्या तन पाया मान नानक गावीए गुणी निधान गावीए सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रह समाई गौरीसर गुर गोरख वर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देव जाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूणी तीर्थ नावा जे तिस पावा गण पाणे कह नाई करी जे तीसर ठो पाई वेखा गण करमा कह मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुने गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विस्तर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूणी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोई चंगा नाउ रखाई कहे जस कीरत जगले जे तैसो नदर न आवई ता बात न पूछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तैस गुण कोय करे सुनया सद पीर सरनाथ सुनया धरत तबले आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोह न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनया दूप पाप का नाश सुनया ईश्वर ब्रह्मानंद सुनया मुख साला हनुमंद सुनया योग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नाश सुनया सत संतोख ज्ञान सुनया अठसठ का इशनान सुनया पड़पड़ पावै मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नाश

अमोल गुण मुल व्यापार मुल व्यापारी मुल भंडार मुल अवह मुल ल जाहे मुल पाई मुला समाहे मुल धर्म मुल दीवान मुल तुल मुल प्रवान अमोल बख्शीस अमोल निशान अमोल कर्म मुल फरमान।

किते अख अखण पाहे, किते कह कह उठ उठ जाहे। एते किते होर करे दाख न सकह कई के, जेवड़ भावे तेवड़ होए, नानक जाने सच असोए। जे को अख बोल बिगाड़, तां लिखी असर गावर गवर। सो उदार केहा सो कर केहा, जितम सर्ब संभाले। वाजे नाद अनेक संखाओ, गीते बावण हारे, गीते राग भरी सौ कही अन, गीते गावण हारे। गावे है तुहन पौन पाणी बसंतर, गावे राजा धर्म दुआरी। गावे चित गुप्त लिख जान, लिख लिख धर्म विचारे। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सुवारी। गावे इंद्र दर्शन बैठे, देवते आंदर नाले। गावे है सद समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावन जति सति संतोखी, गावे वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सुर, जुग जुग वेदा नाले। गावे मोहनिया मन मोहन, सुरगा मछ पयाले। गावन रतन पाए तेरे, अड़सठ तीर्थ नाले। गावे जोत महाबल सूरा, गावे खाणी चारी। गावे खंड मंडल वर पंडा, घर घर रखे थारे। सही तुदन गावन जो तुद भावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितना आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच, सहव साचा साची नाई है। पी हो सी जाय न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर, जनसी माया जिन पाई। कर कर वेख पीता अपना, जब तस दी बढ़ियाई। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह श्याम पात साहिब, नानक रहण रजाई। मुंदा संतोख शर्म बत चोली, ध्यान की करै मिभूत। खिंथा खाल कुवारी काया जुगत, डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत। आदेश दस आदेश, आद नील अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश, भुगत गया दया भंडारण। गटगट वज है नाद, आप नाथ नाथी सब जानकीर। दिस दबरा साध, संजोग वजोग कार चलावे, लेखे आवे भाग। आदेश तिस आदेश, आद नील अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई। तंचले परवान, एक संसारी एक भंडारी। एक लाई दीवान, जब तिस भावे तवै चलावे। जब वह फुरमान, ओह वेखै ओ ना नजर ना आवै। बहुता ए बडाण, आदेश दस आदेश। आद नील अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेश।

देव वेव न जानी जय बेदर्ग देव रुद्रंग न जात बासु जानी के जे भूतात्मा न जात जाकर जन्म मरण विहीन चकर वकर फिर चतर जाक मानी पर दीन लोक चौदह के विखे जग जापी जय जाप आद देव नाद मूर्त सब सब जय साप पारम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचो सुयम भवकर्ण भंजन हार कालहीन कल संयुक्त काल पुरख देश धर्मदास परम रहत भूतल कपेश अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दोष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूपा मी का नस्त देख पुरख भूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन अपंगनात्मिक पुरख पार सर्वलायक सर्वकायक सर्वको व्रत पार सर्व गंता सर्वहंता सर्वध्यान पेख सर्वशास्त्र न जानी जय रूप रंग रेख परम वीर प्राण जय कह नेत भक्त नेत कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवई बहु चित मद पार छंद तक प्रसाद गुणगान उदार महिमा पार आसन पांग उपमान अनुभव प्रकाश निशन नाशा जन बाह शाह राजन राज पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकान रंग कालन काल गण भूत अंग आप अंग गदमित पार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपै निकाम आत्त प्रचंड मृदगत अखंड अलिश कर्म अदृश धर्म सर्व प्रनाढ़ आन दंड बढ़ चाचरी छंद तब प्रसाद गोविंद कंधे उदारे पारे हरियंग करियंग निर्नामे कामे भुजंग प्रयाद छंद चतर चकर करता चतर चकर हरता चतर चकर दाने चतर चकर जाने चतर चकर वरती चतर चकर भरती चतर चकर पाले चतर चकर काले चतर चकर पासे चतर चकर वासे चतर चकर माने आए चतर चकर दाने आए जाजरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न करमंग न काय जन्मंग जाय न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिशा दिशा दृशा कृषाय भगवती छंद का प्रसाद कथ दे क्या सच देसा क्या बिज बेसा क्या कन करम क्या बज भरम क्या बिज लोका क्या दसो कह के अवदूत वर्ण के विभूत करण है जागतंग रति है कि शतरंग क्षत्रिय है कि ब्राह्मण स्वरूप है कि अनुपान रूप है कि आदो देव है कि आप भेव है कि चतरंग भिन्न है कि कह दीना है कि रोजी रिजा कर ही मेरे हाथ है कि पाक बेऐब है कि गै बुल गैब है कि अफ बुल गुना है कि शान शाह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी दहन है

हरि हैं। के सर्वत्र माने आएंगे, सर्वत्र दाने आएंगे, सर्वत्र गावने आएंगे, सर्वत्र भावने आएंगे। के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज्य है, के सर्वत्र

अकर्मंग परमंग गंजे लेखे भुजांग प्रयात छंद नमाज तुल प्रणाम में समाज तुल प्रणास गंजल नाम में समाज तुल निवास नर कामंग भूते समाज तुल स्वरूप एको कर्मंग प्रणास सु धर्मंग भूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी ग्रीमल परिंदा समाज तुल निवासी अजायब भूते व्यावगनी मैं हरि अंकरी अंकरी मरही मैं जदर जगर भारती जदर जगर भूते सुयाम पव सुभंग सर्वदा सर्व जगते

जपन काल सब जगत बनायो देव तो जशन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सदरन को बल मोह पद कियो गड़गड़ की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दे टकर फूला संतन दुख पाए दे दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने गड़गड़ के बट बट की जाने जब उद करख कर करतार प्रजा तरत तब दे अपार जब या करख कर तो कम हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही तेरा निरालम जानत भेद भेद अरयालम।

प्रवेश करो ऋण काता। जे आस्तोज तब सरणी परे तनके दोष दुख तब मरे पुरुष अवन भग परे तिहारे तनके तुम संकट सब टारी। जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निकट नहीं आए है रचा हुई दाई सब काला दुष्ट रष्ट डरे तत्काला। कृपा दृष्ट धन जहन हर हो ताके ताप धन कमो हर हो रिद सद कर्मो सब होई दुष्ट शास्व सके न कोई।

पाएंगे हैं जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ समृत शास्त्र वेद सवै भव भेद कहे हम एक न जाने ओ सरी असबान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कहे गयो तुहार द्वार महंगे की लाज आस गोविंद दास द्वार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज से मन वजियां वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया

माता के उदर में प्रतिपाल करे सो कह मनोवसारी है, मनोकवसारी है बुढ़दाता जी अगर मैं आहार पहुंचावे उसनु के पहु न सके जिसनु अपनी लिव लावे। अपनी लव आपे लाए गुरमुख सवा संभाली है कहे नानक बुढ़दाता सो क्यों मनोवसारी है जैसी अगन उदर में तैसी बार माया माया गन सब एक जही करता खेल रचाया। ज्ञान तिस बाण दा जमया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी त्रिशना माया मर बरताया हे माया जितर विसरै मोह उपजै पाउ दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हराब मुल कहै मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसै बिटों रहे लोक बिल लाए ऐसा सतगुर जी मिलै तिसनु सिर सौंपिया विचों आप जाए। जियो मैले बार निर्मल बार निर्मल बार निर्मल जियो मैले।

जग माया है कहे क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीर जा तू जग माया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन न बसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया कहे नानके शरीर प्रवान होवा जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी हर बिन वरन देखो कोई हर बिन वरन देखो कोई नदरी हर निहालया ए विश संसार तुम देख दे हर का रूप है रूप नदरी आया गुर प्रसादी पुजया जावे का हर एक है हर बिन वरन कोई कहे नानके नेत्रांध से सतगुर मिले आयंद बदरहट होई ए श्रवणो मेरे हो सच सुन मैनो पठाए सच है सुन मैनो पठाए शरीर लाए सुनो सतबाणी जैत सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस्त माणी सच लख बडाणी दा की गत कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो साचा सुन मैनो पठाए हार जियो गुफांदर रख कै वाजा पौन बजाया बजाया वाजा पौन नाम द्वारे प्रगट किए दसवा को दरखाया गुरुद्वारे लाए पावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया तह नेक रूप नाव नाव ने दिसदांत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफांदर रखै वाजा पौन बजाया एह साचा सुहिला सच कर गावो गावो तो सुहिला कर सच जथे सोहा सच दयावे सचो दयावे जान तुद पावे गुरमुख जिन्ना बजावे ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ ਸੁਜਨ ਪਾਵਹੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੁਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਰ ਗਾਵਹੀ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬਟ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ

न पुरुष क बनवंत नानक सुख नाम भगति दार वजे अनहद बाजे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग व

देवे नमः अष्टपदे सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन मह मिटावो सिमरो जात विशंभर एक नाम जप अगंत अनेक वेद प्राण सिमरत सुधाकर किने राम नाम एकाकर किनका एक जिस जीव सावै ताकि मैं मांगनी न आवै कंखी एक दर्श तुहारो नाम कुन संग मोह उधारो सुख मुनि सुख अमृत पर नाम भक्त बिना कह मन विश्राम रहाओ प्रभु कह सिमरन गर्भ न बसै प्रभु कह सिमरन दूध जम नसै प्रभु कह सिमरन काल पर हरै प्रभु कह सिमरन दुश्मन तरै प्रभु सिमरत कछ विघ्न न लागै प्रभु कह सिमरन अंजन जागै प्रभु कह सिमरन भव न व्यापै प्रभु कह सिमरन दुख न संतापै प्रभु का सिमरन साध कै संग सर्व धन नानक हर रंग प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगह मानी प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सुफल फला से सिमरह जिन आप सिमराए नानक ताका लागो पाए प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा प्रभु का सिमरन उदय मूचा प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु का सिमरन सब किछु सुझै प्रभु का सिमरन नाहीं जम त्रासा प्रभु का सिमरन पूर्ण आशा प्रभु का सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृदय माहे समाए प्रभु जी बसै साध की रचना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरह से धन बनते प्रभु को सिमरह से पत बनते प्रभु को सिमरह से जन प्रवान प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरह से बेमोहताजे प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे प्रभु को सिमरह से सुखवासी प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जन आप दयाला नानक जन के मंगर वाला प्रभु को सिमरह से पर उपकारी प्रभु को सिमरह तन सब बलिहारी प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे प्रभु को सिमरह तन सुख बिहावे प्रभु को सिमरह तन आत्म गीता प्रभु को सिमरह तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरह तन अंध कन्हेरे प्रभु को सिमरह बसे हर नेरे संत कृपाते अंधन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु कह सिमरन कार्य पूरे प्रभु कह सिमरन कभु न चूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी प्रभु कै सिमरन नेचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जन को प्रभु मया नानक जन जन सरणी पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदि जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊह नाम तेरे संग सहाई जय महाप्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माह उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावहु सुख कन्हेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जप्त होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जप्त निस्तरै अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जप्त आघावै जे मार्ग एह जात अकेला तह हर नाम संग होत सोहेला ऐसा नाम मन सदा ध्याइयै नानक गुरमुख परम गत पाइयै झूठत नहीं कोट लख वाही नाम जप्त तह पार पराही अनक बिघ्न जह आय संघार हर का नाम तत्काल उधार अनक जोन जन्म मर जाम नाम जपत पावै विश्राम हौ मैला मल कबहु न सोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपहु मन रंग नानक पाइया साध कै संग जिह मार्ग के गण जाहे न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जह पैंडै महा अंधक भारा हर का नाम संग उजियारा
जहां पंथ तेरा कोना सुनानू हर का नाम तह नाल पहचानू जह महाभयान तप बहु काम तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम जहां त्रखा मन तुझ आकर्ष है तह नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बरतन नाम संत जना कह मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर का नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत जन रात हर हर औकद साधक मात हर जन कह हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रसे रंग एक नानक जन कह बिरत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर का नाम जन को त्रिपत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब पर न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर का नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहे वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालिक जीना हर धन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओत सतानी हर प्रताप जन अगन जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते करे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम संत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्ग सब नसै संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम से आई है नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति देखे सर्व तंडोल पूज सनाहे हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान कट शास्त्र सिमरत विख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म करिया सगल त्याग मन मध्य करिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुण्य दान हो में बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम कर बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौ खंड पृथ्वी चरे चिर जीवै महा उदास तीसर थीवै अगन माहे होमत प्राण कनक अस्तव है भरभूम दान न्योली कर्म कर बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै तौके हमै मैल न जावै हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच कर दिनस अर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करै मन ते कभू न बिख्या करै जल धोवै बहु देह अनीत शुद्ध कहाँ होय कच्ची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उधरे पत्त बहुमूच बहुत स्याणप जमका पौ व्यापै अनक जतन कर कृष्ण ना त्रापै देख अनेक अगन नहीं बुझै कोट अपाव दरगह नहीं सिझै झूठ सनाही ऊ पयाल मोह व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जमदान गोविंद भजन विन चल नहीं मानै हर का नाम जप दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए चार पदार्थ देखो मांगै साल बिना की सेवा लागै जेको अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जेको अपनी शोभा लोरै साध संग ए हो मैं छोरै जेको

प्रभु तेरो मान सगल घटा को देहो दान करन करावन हर स्वामी सगल घटा के अंतर जामी अपनी गत नित जानहु आपे आपन संग आप प्रभु राते तुमरी ओसत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोई सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हरिया सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जे घट वसै

अष्टपदे रमैया के गुण चेत पुरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्ह उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूध बिरद भया ऊपर साख सैन मुख अप्याओ बैठ पाओ दैन एह निर्गुण गुण कछु न बुझ है बख्श ले हो तव नानक चीज है जे प्रसाद धर ऊपर सुख वस है सुत भ्रात मीत बनता संग हस है जे प्रसाद पिवे शीतल जला सुखदायी पवन पाप अमुला जे प्रसाद भोग है सब रसा सगल समग्री संग साथ वसा दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संरचना ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापे नानक काड ले हो प्रभ आपे आद अंत जो रखन हार तिस स्यों प्रीत न करे गवार जहाँ की सेवा नव निंद पावे ता से मूढ़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जान च दूरे जहाँ की टहल पावे दरगह मान तिसे बिचारे मुग्ध अजान सदा सदा एह भूल नहार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौटी संग रचै साथ छोड़ झूठ संग मचै जो चढ़ना सो अस्त्र कर्माना जो हवन सो दूर पराना छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाई तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तोये गर्द प्रीत भस्म संग होए अंधकूप में पतित विकराल नानक काट ले हो तब दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेक अंतर मल माया शब्द नाही कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोग सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाह गल पात्र कैसे तरह अथाह जाक अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे करगह लेहो ओढ़ निभावे कहाँ बुझारत बुझै डोरा निस्कहिया तव समझै भोरा कहाँ बिसन पद गावै गुंग जतन करै तव पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तुहां उस गवन करतार करना में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा करै संग सहाय सुआवै न चीत जो बैराई ता सो प्रीत बलुआ के गृह भीतर वसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर्मा न मन प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह याहु जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख लेहो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसूख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सब समग्री तुमरा सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देनहार प्रभ छोड़ कै लाग अन सुआए नानक कहू नसी जाए बिन नावे पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछ पावे एक बस कारण विखोट गुवावे एक भी न दे दस भी हिर ले तौ मऊड़ा कहो कहाँ करे जिस ठाकर सो नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा।

आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ, प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास, प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए, सर्वन धाम प्रभु तेरी माया, आप हो कछु न किन्हु लया, जित जित लाव हो तित लगे हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सुमुक्ता होए, सुन मिता नानक बिन बनता, साध बिना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटे अभिमान, साध कै संग प्रगटे सुज्ञान, साध कै संग बुझै प्रभु नीरा, साध संग सब होत नबेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभु माहे सुमानी। साध कै संग अगोचर मिले, साध कै संग सदा पर फुले, साध कै संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग नकत हूं तावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक सब सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर, साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग नाही हौताप, साध कै संग तजा सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई, साध कै संग न कब हूं तावे, साध कै संग सदा सुख पावे, साध संग बस अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुँचै, साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध कै संग कलोकत है, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग नांदर था जावे, पार ब्रह्म साध रिद वसै, नान कुदरा साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग नामन ते विसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट बीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जानह, जेता सुनह तेता बखियाने, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा

लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंक कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक ज्यों सुधा को खोद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला जैसे मैल ना लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच दे ऊंचा मन अपने है सबसे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी से कछ बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी

ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी का होय सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सब उधार।

आधार ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहबुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी का हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अधाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाहीं रचना पर्श मन में प्रीत निरंजन दर्श परत्र रूप न पेख नेत्र साधु की टहल संत संग हेत कर्ण न सुन काहू किंदा सब ते जान आप को मंदा गुर प्रसाद दुखिया पर हर मन की बासना मन से तर इंद्री जत पंच दोख से रहत नानक कोट म देखो ऐसा अपर्श वैष्णव सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया से होए भिन्न कर्म करत होवे निह कर्म तिस वैष्णव का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ वर नाम जपावे नानक ओह वैष्णव परम गत पावे भगौती भगवंत।

साध संत पापा मल खोवे, तिस भगौते की मत उत्तम होवे। भगवंत की टहल करे नितनीत, मन तन अपै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावे, अंत ऐसा भगौती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध, राम नाम आत्म सोद। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित का उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे। वेद पुराण सिमरत बुझे मूल, सुख मह जान अस्तूल। चौ वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वरना में जपे को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोय। कर कृपा अंतर उरतार, पस प्रेत मुग्ध पात्र कौतार। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगान। काहू जुगत कितै ना पाइया धर्म, नानक दिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नगरी आया, दास दसम तन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कह।

तैसा अमृत तैसी भिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रखे तैसा।

कई कोट जक्ष नरपिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सब ते नेरा सब हुते दूर, नानक आप अलिप्त रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक।

हुक्मे उपजा हुक्म सुनावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनकरंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक सब मह रह समाई, प्रभ भावै मानुख गत पावै, प्रभ भावै तां पात्र त्रावै, प्रभ भावै बिन सास ते राखै, प्रभ भावै तां हर गुण भाखै, प्रभ भावै तां पत ते उधारै।

करावै, नानक दृष्टि अवर नावै, कहो मनुख ते क्या होयावै, जो तिस पावै सोई करावै, इस कै हाथ होए ता सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे, अनजानत दिखिया मह रचै, जे जानत आपन आप बचै, परमे भूला दह दिसावै, निमख माही चार कुंठ सिर आवै, कर कृपा जिस

कबहूँ निरत करे बहु पात, कबहूँ सोय रहे दिन रात, कबहूँ महाक्रोध विकराल, कबहूँ सर्व की हो तरवाल, कबहूँ होए बह बड़ राजा, कबहूँ पे खरी।

गुर प्रसाद नानक सच कह, कब हो होए पंडित करे बख्यान, कब हो मोन धारी लावे ध्यान, कब हो तक तीर्थ स्नान, कब हो सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कब हो कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनक जोन परमै परमिया, नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे, ज्यो प्रभ पावे तिवै नचावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोय, कब हो साल संगते पावे, उस स्थान ते बोर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंतन नामृत एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै

नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जन जो बनवंत सो होवत विस्ताका जंत आप स्व कर्म बंत कहावे जन्म मरे बहु जोन प्रमावे धन भूम का जो कर गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकी हां मुक्त आगे सुख पावे धनवंता होय कर गरबावे तृण समान कछ संग न जावे बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस पल भीतरता का होय विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मह होय जाए पशमंत किसे न बद आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटा दमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हों तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निंद्रवे हर दरगह को कैसे गवे आप को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए को नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोय जब ए जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जो मैं फिरता।

देश जाए। सब कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे। सह सखटे लख कौ उठतावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग दिखिया के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसै प्राप्त होए। कर्म करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। कर्म करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो कुछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूँ कै संग। बुझे देखे करे विवेक, आप है एक आप है अनेक। मरे न मिल स आवे न जाए, नानक सद ही रहया समाए। आप उपदेश समझ आप, आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका ओ करने हार। उससे भिन्न कहो किछ होए, थान तनंतर एक सोए।

संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत का दुखन आर जा कटे संत का दुखन जमते नहीं छुटे संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुखन नरक में पाए संत का दुखन मत होए मलीन संत का दुखन सो बाते हीन संत के हते को रखे न कोई संत का दुखन थान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरे संत के दुखन ते मुख पवे संतन का दुखन काग जों लवे संतन का दुखन सर्प जोन पाए संत का दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन का दुखन तृष्णा में जले संत का दुखन सब को चले संत का दुखन तेज सब जाए संत का दुखन नीच नीच आए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावे ता ओए भी गत पाए संत का निंदक महा अत ताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखिया अर्दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दोख में दोख नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को दान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा भिकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख के तरह संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत भावे ता ले मिलाए संत का दुखी अध बीच से टूटे संत का दुखी कितै काज ना पहुँचे संत के दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर के सोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ ना है आपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी पावन राखन हार नानक संत भावे तै ले उबार संत का दुखी यों बिललाए ज्यों जल दिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापे संत का दुखी छुटा अकेला ज्यों बुआर चल खेत माहें दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदन क्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस भावे सोई पया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है संत के दुखी की पूजा न आशा संत का दुखी उत्सले निराशा संत का दुख न पृष्ठ कोई जैसा पावे तैसा कोई होए पया किरत न मेट कोई नानक जाने सच्चा सोए सब घट तिसके ओह करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उत्तद करहो दिन रात तिसह त्याग हो साध गिरास सब कछ वर्ते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़ भागी।

नानक दुख भरन पौ जाए अष्टपदी। मानक की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक भगवान। जिसका दिया रह अघाए, बहुर ना तृष्णा लाग आए। मारा राख एको आप, मानक कह किस नाही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम राख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक विघ्न न लागे होए। उस्तुत मन में कर निरंकार, करमन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रचना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो। नैनो टेक ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उज्जल मथा। बड भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, से धनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जान होते सुखी। एक को एक एक पछाने, इत उत की ओह सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हे निरंजन जानिया। गुर प्रसाद आपन आप सुझ है, तिसकी जानो तृष्णा बुझे। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओह हर जन रहत। अनदिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त मह सोई निर्बान। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटी है जम की पासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसह न लागे दुख। जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सो संत होइला नहीं दुलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत सब बुझिया। जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सूखम सोई असूल। न किछ जन्मे न किछ मरे, आपन चलत आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मह आप, अनक जुगत रत थाप उथाप। अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धार रहो ब्रह्मंड। अलख अभेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जात। जिन पव जाता सो सो भावंत, सगल संसार उद्र

नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व दिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते व्यर्था कोई ना है रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी कब आपे आप आपन किया कछु न होए जे सौ प्राणी लोचे कोय जिस बिन नाही तेरा किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होय नाही मोहै प्रभ की जोत सगल घट सो है धनवंता होय क्या को गर्व है जां सब किछ तिसका दिया दर्ब है अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहतावै जे को

ज्यो मंदर को था मैं थमन, त्यो गुर का शब्द मन असमन। ज्यो पाखान नाव चढ़ करे, प्राणी गुर चरण लग्त निस्तरे। ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होय विगास। ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बाछो धूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे दिल लाइए, पुरब लिखिका लिखिया पाइए।

रहो रस लो भी पतंग, राम नाम जप हृदय माहि, नानक पद से ती घर जाहे, जिस वखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान लिहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद खेप संत है संग चाल, अवर त्याग दिख्या जंजाल, धन धन कह सब कोय, मुख उज्जल हर दर गह सोय, एह व्यापार विरला व्यापार है, नानक ता कह सद बलहार है, चरण साध के धोए धोए पियो, आप साध को अपना जियो, साध की धूर करो स्नान, साध ऊपर जाइया कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाइय, साध संग हर कीर्तन गाइय, अनक बिघन ते साधु रख है, हर गुण गाय अमृत रस चख है, ओट गही संत हंदर आया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देवत आधार, सर्व निधान जाके दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे, सब किस तिसका ओ करना जोग, तिस बिंदु सर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मल एह करनी।

ना अस्त सदी अब नासी प्रभ मन मह राख मानक की तू प्रीत त्याग तिसते पर नाही किछ कोय सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपाण धाम दयाल बख्शंद साज तेरे की चरण पाओ नानक कह मन इह नड़ाओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फो तिसका मंत्र न जाना होर अनद रूप मंगल सब जाकै सर्व थोक सुनिया है घर ताकै राज महराज जोग मह जोगे तप मह तपी सरग्रस्त मह भोगे त्याए त्याए भगतै सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाके लीला की नित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जिन दे जन

स्वाद प्रभ के रंग रास जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जा के संग तरह संसार जन का सेवक सो वड भागी जन के संग एक लेवल।

सास सुमारे, अपने जनका पर दाता कह, अपने सेवक की सर पर रख, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की

सेवक दह दिस प्रगटाया, नेकी कीरी मह काल रखै, भस्म करै लश्कर कोट लाखै, जिसका साथ न काटत आप, ताको राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत।

जप नानक प्रभ लख विदानी बारंबार बार प्रभ जपिया ए अमृत एह मन तन तृपिया नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किछ अवर नाही दृष्टाया नाम धन नमो रूप रंग नमो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन्ना मह नाम सुमने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सड़ काम बोलो जस जिह बा दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करहे भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने स्यों रह है समाये जो हो आहोवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पहर प्रभ बसह दूरे कौ नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तन अपना तिन जन देह।

अष्टपदे सतगुर सिख की कृपा प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख बड़ भागी है सतगुर सिख का हलत पलत सवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै गुर कै ग्रह सेवक जो रहै गुर की आज्ञा मन में सहै।

अपनहि कछ परम सहस सियान तो लया न जाइय नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइय सफल दर्शन ते पुनीत पर सचरण गत निर्मल रीत भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर बचन करन आघाने मन संतोष आत्म पतियाने पूरा गुरु क्यों जाता मंत्र अमृत दृष्टि देखा।

पाए ताकि कीमत किन न पाए। अनक भगत बंदन नित करहे चरण कमल हृदय सिमरहे। सद बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमृत सो होय। उस पुरख का नाही कदे विनाश जाकै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले सत उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तहते नासे। तपत माहे ठांड वरताई अंध भया दुख न थे पाई। जन्म मरण के मिटे अंधेसे साधु के पूर्ण उपदेसे। भौ चूका निर्भौ हे बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे। जिसका सातिन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी। थित पाई चूके प्रम गवन सुन नानक हर हर जस सरवन। निर्गुण आप सरगुण ही ओही कलाकार जिन सगली मोही।

नाम हरवत्थ इहो धन संत हो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रख हो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन को चार कुंठ उठताव है सो धन हर सेवा ते पाव है जिस सुख को नित बच है मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरणी अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निधान में हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन पर बोधो।

सब की दृष्ट महासुख होए, हर रस पावे बिरला कोय। जिन चाख्या से जन तृप्ता ने, पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने। सुभर परे प्रेम रस रंग, उपजा चाओ साध कै संग। परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगाश अनगिन निर्लाग। बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होय दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुन्नी सरदा सब पूरी, रव रहया सत्संग हजूरी। जिसका साथ तिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरा जे काल न पान, सो क्यों बिसरा जे किया जान। सो क्यों बिसरा जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरा जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरा जे अग्न मह राखे, गुर प्रसाद को बिरला लाख। सो क्यों बिसरा जे बिखते काढ़, जन्म जन्म का टूटा गांढ। गुरपुरै तत् है बुधाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो इह काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावहो, आप जपहो अवरह नाम जपावहो। भगत पाए तरिया संसार, बिन भगति तन होती छार। सर्ब कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपोहो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मन तन अंतर इही सुआओ। नेत्र उपेख दर्श सुख होए, मन बिकसै साध चरण धोए। भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावै संग। एक बस्त दीजै करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभ बसंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल। आदि पुरुष कारण करतार।

अष्टपदी जब अकार इह कसना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण तिन न जापत तब हर्ष शोक कहो किसे व्यापत जब अपन आप आकार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करना हार न दूजा जब होवत तब केवल सनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक हर अग्न पार तब नर्क स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण तब सहज स्वभाई तब शिव

आप अपनी जोत धरे, तब कवन निद्र कवन कत डरे, अपने चलत आत करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अब नासी सुख अपना सुन, तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत अगोचर प्रभु एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शल शिद्र लगत कहो कीस, जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तह किसे पूत कवन तृप्तावे, करण करावन करने हार, नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई, जह सर्वकला

जय अचल अशेर अभेद समाया उहां किस व्यापत माया आप कौ आपे आदेश तेह गुण का नाहीं प्रवेश जय एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जय आपन आप पतियार तह कौन कथा कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानका बस कौ आप है पहुँचा जय आप रत्यो प्रपंच अकार तेह गुण में तीनों विस्तार पाप पुण्य कह

अब कर देख खेल संकोच तव नानक एक जह अवगत भगत जह आप जह पसर पासार संत प्रताप दुहू पाख का आप है धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आप है कौतुक कर

काल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर्जामी रहो व्याप प्रतपालय जी अनुभव पात जो जो रचे सुत सहत्यात जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करहे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास करमान्या करनहार नानक इक जान्या जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरति जाए सेवक कौ सेवा बन आए हुक्म बूझ परम पद पाए इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोड़ भय निर्वैर अनगन पूजे गुरु के पैर एह लोक सुखिए परलोक सुहेले

अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का एह सुहाओ। आठ पहर प्रभु देखो नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुनो उपदेश हृदय बसाव हो, मन इच्छे नानक फल पाव हो। हलत पलत दुह लिहो सवार, राम नाम अंतर उतार। पूरे गुरु की पूरी दिखिया, जिस मन बस है तिस साच परिखिया। मन तन नाम जपहो लिवलाए, दुख दर्द मन ते

सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर्जामी पुरुष प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल ताके नित्य न आवत काल अमर भये अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया।

आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक जिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप वरतारा सर्व नैन आप ते खनहारा सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नीमाया सब कह मत लिप्त रह जो किस कहना सो आपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए इससे होए सो नाही बुरा और कहो किने कछ करा आप भला करतूत अपनी की आपे जान अपने जी की आप साथ तारी सब साथ ओत पोत आपन संगराच ताकि गत मित कहीं न जाए दूसर होए तसो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक एह जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओह धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जनाया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का एह सुआओ जन कै संग चित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर देख साथ साथ सुमरह।

आतम अग्न सागर तहो हर तन के भर लेहो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद।

भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रत्न संत कुमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाकर मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन हमद करे प्रभु का जय प्रगटे गोपाल महा कै माते नान कोदरे तन कै साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होए सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभ की औसत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहर न होवे अवन जान हर धन खात चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रुद नव निब बुद्ध ज्ञान सर्व कह सिद्ध विद्या तप योग तप ध्यान ज्ञान प्रेस

तिस जन कै मुख तने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग मह ताके गत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संगटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै

0: नानक ए गुण नाम सुखमनी सब ते ऊच ताकि शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: केलबो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नु पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3075।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Seek Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

गुरु का शब्द अमृत है, जित पीता है दिख जाए। यह मन रत साचा सच रता सचे रहा समाई, आखण बेखण बोलण चरण बोलना शब्द रहा समाई।

नाम से मन आई राव। जिन मान जिन कर कारण तारिया सोई सार करे गुर कै पाणे गुर कै शब्द पछाणी है जय आपे नजर करे।

जाय पुछा तन सजना प्रभु कित बिद मिलाए सजा मिलाई। मेरा सतगुरा मैं तुझ बिना वरना कोई, हम मूर्ख मुग्ध शरणागति।

तुसा होया पहलवान तुसा होया पहलवान जग दे करदा तुसा होया पहलवान जग दे करदा

0: उबला नैतियो उबला नैतियो गरीब आते मारेदार उबला नैतियो गरीब आते मारेदार
1: गुरु गुरु खालसा जी सहने कमाल गुरुए मुबारक तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह का बख्शा नारा बुलंद करो सब संगत सब आए भाए बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हुणे हुणे आपां गए साहिब सिंह जी पासों गंगा राम जी उन्हों का इतिहास है जो सुन रहे थे। सरगुरु गुरु अमरदास महाराज पातशाह ने उस सेवक से कृपा की जाओ दिल्ली में जाओ थोड़ा कारोबार है जरा बड़ा चलेगा। धन गुरु अर्जन साहब महाराज पातशाह जिन्होंने श्री अमृतसर साहब सरोस जरा शहर है बसाया है 52 लोग वखो वखर किते करने वाले सतगुरु ने इथे लियांदे सन। उन्हां ने एक दिन आके बेनती कीती कि सतगुरु असीं अपनियां दुकानां जिहड़ियां वखरियां वखरियां पा लईआं हन पर कारोबार है जिहड़ा वो बड़ा ढिल्ला जिहा ते गाहक आ जिहड़े बहुत घट आउंदे आ ते असीं उदास रहिंदे आ। सतगुरु कहिण लगे तुसीं हर रोज दरबार साहिब आउंदे हुंदे आ मत्था टेकण? कहते नहीं जे कदे कदे कोई कोई दाके मैं रोज आना कोई कहते जी कदे

आणि कर आणि गिरत नाही. जेडे ताप कारवायचे ते ताव पाहाव. एक किस्म ताप ताप कारवायने जिंदेची टूडियां ताप दे ताव मिलता है. गर्मिया बिच गर्मी होर सहंदे ने सहन करदे ने. तत्ती धुप बिच सूरज के सामने बैठ के ता तो फिर ताओ बिच बैठ के तप करते. असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ जिन्होंने यह समझाया गया इन्नी बारी पाठ कर लो तो बस रब मिल पैंदा. हुण इत्थे लफज इसलिए मुख वरतिया गया. हालांकि जे कला पाठ कर लो आखिए तो फिर भी तो मूँह नाल करना है. वो आपे स्वभाविक आ जाते क्रिया पाठ मूँह नाल ही होना. पर इत मुख लफज स्पैशल वरत्या गया क्योंकि वह मुख नाल पाठ करन ही रब दे मिलन दा साधन बनाई बैठे ने. इन्नी बार जपजी साहब का पाठ कर लवेंगे इन्नी बार सुखमणी साहब का पाठ कर लवेंगे बस रब मिल पाठ कर मूँह नाल. देखो कभी यह गलती ना समझ रहा भी असी यह दूजे को आखिए अपने प्रति ना सोच दिए. जेडे केवल बाणिया हिरदे वसान उनके गुणा हिरदे वसान बाणी समझ के जीवन उनके अनुकूल बनाने की बजाय केवल पाठ पढ़न ही सब कुछ समझी सकते. पुराया दस सब्जी साहब के पाठ रोज करता उनके को पुछो की करता उन्होंने कोई पता नहीं पाठ से मूँह डाल. गुरु ने आप दिता कहते कि हैं फुल मैं उन्होंने कंडे की गिनती चंगे ने. उन्होंने किसी ने समझाया ही इन्हें भी इन्नी बार जपजी साहब के पाठ कर लो. मैं एक बार की साढ़े समझाने वाले भी वो लोग ने जेडे गुणा के वाल नाल सांझ पैदा ही नहीं करते. आख देंगे जे तुसी संसार जे तुसी 108 भी मनके की माला जी है उन्होंने 180 माला राम राम दिया रोज कर लो श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का फल मिल जाता. जे 80 माला रोज कर लो इतों तक आप दिन दिन वाहगुरु शब्द की माला करने श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का फल मिल जाता. जे 10 जपजी साहब के पाठ रोज कर लो श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का फल मिल जाता. तो जे पुछो भला किवें आप दिन की गिनती पूरी हो अखर की गिनती पूरी हो जाती. केवल अखर की गिनती नहीं गुरु कहते भरिया गुणा की गिनती कर. एक एक पौड़ी विचों तेनों की गुण मिलता है वह गुण ग्रहण करना है. गुण ही करो पै बागुरु तो उनका नाम है ना सतनाम से उनका नाम है ना. नाम जोड़ा है वह गुण करके ही रखा गया इसलिए गुण परमात्मा है. पर हो भी रहा मुख वेद पाठ गुरु ने यह गलबाणी भी चाकी कहने लगे.

अनगिनत ही सत पुरुष ने जेडे सत नाल सांझ रखते हैं, किसी के लोड़ वेले कब भी आते दाते भी पर नाल ही आकर कह लगे मैनू इसलिए परवाह नहीं क्योंकि दाते जरा मनुख दाता है ना वो किसी लोड़ लिए दान करता है। उन्होंने पता लग गया कि दान दिते हैं बदले में चौगुना दस गुना सैस गुना होके फल के वापस कर पड़ा है। दान मनुख इसलिए करता है। मैं कल की किसी आज मनुख दे संस्कार में एक गल पढ़ते हो कि दान बिल्कुल किसी काम नहीं आऊंगा तो हम बदले में कुछ नहीं मिलेगा, लोग बिल्कुल नहीं दान करते, वो काम मनुख करना ही चाहता जिंदगी रिटर्न ना हो जिंदा लाभ ना हो जिंदा फायदा ना प्रॉफिट ना हो वो की करना। मनुख धर्म की दुनिया में भी व्यापारी है, धर्म को व्यापार इस तरह बढ़ा दिता गया क्योंकि मनुख जो कर रहे हैं सोच रहे हैं इनके बदले में मिलता है कुछ मिलता है ता करा। तो गुरु ने ऐसे नहीं कह दिता सचिय मन संतोख उप जाए, देने के विचार दे दे मंगे सह सकना। पर गुरु कहते हैं चलो भले ने जो दान करता है उदो ये सोच रहे हैं भी ये चंगा काम है, वो तो अबल चंगा काम ही कर रहा है

दूर एडा बिखरा पेंडा ले आया है, कर कृपा तेरे स्थान दे दर्शन हो जाए। प्यार विच पिट के तरला करती है, ये सुनते है भाव पहाड़िया दे विचों सत श्री अकाल दे जकारिया की आवाज आ रही है। इंज लगता है जिमें कोई होर जातरु आ रहे हो, माता सोचती है इंज लगता है, पर नहीं बई इस गुरु सुखे की निशानी है।

माँ तू किमें आ गई किमें पहुंच गई आखन लगी पुत्र है ते मैनू भी नहीं पता मैं किमें पहुंच गई तो सत्संगी हो ये शरदा ते भावना दी गल है कि साडे मन विच प्यार है साडे मन दे विच शरदा है ते गुरु आप टुट पैंदा है गुरु आप दयाल हो जांदा है।